0: ཁྱི तो सब सवा सब ने सहे मिंदु आमने नि जिगा ने देसे गने बे केक्चे शे मासवा देगुगी तमने नि हिगा न्यो बा
1: छेना जा छोले मा तो दे नाल देसे
0: छिता दिस कबा छंगवा से मे सुसिं रे से दे लेला बियो रे नि गे गोर ता तो या छेव सगा से ता नि से ले मसि बा गोप ता शुसा दु कबा रे जा मसि बिना
2: जा बा शुसि
0: जा छोले सा दि रे कबा छंगवा से बा आमे तो सा उयु जि सगी हा जि बु ता उयु जि सगी गने उने न्यो रो से ओसु जा गे आमा या छि मे बे
2: 是不是啊让俺孙子内部给学学算算来还是不能看电视内部的也起不停电了家伙这样下去了你就看了不对明美拿了你就多死了下你家伙你们看现实点点年意你就拿了不是空村拿你就看了啊他端的空你三十年这学一出这学那学不定不管孙子这样下去了明美让中国的中国不过你现实点点吧可是我谁然后不用阿夏的赵出来
3: 这行了不是啊这竞争的不竞争的需要你你拿着去买嘛是吧这个俺们你这个来调的他都行了这么多啊他这也不过是拿着去连麦他学的家宝给我阿家是陪去阿家老看不少家宝哎家宝不了这么亲戚就要是让给看你不是多少么个啊哦呀没了大家走没了没了好家宝
2: 莫给张西拉钱去对的巨人过去没吐血人家苏个人入侵对的切着也亲对的对的莫了面对的张西来张西来不许的我明明看出哪里有你你最好拉不了一起不给听啊最大气往前家宝呀阿家金真你们都这么子一起春雷明明有你卡切多开门多
0: 군이사준이갑수쇼둔다시스케민도
2: 우민매 랑송 총출다.
0: 뭐라게 양아 저 주주 승민도.